फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से ही बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक सवत 1940 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026। इस समय 5:57 हुए हैं। हमारा आज

हम आकाशवाणी के रैकेट केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समन्वित सामुदायिक योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण दिल्ली DLC से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे ध्रुपद गायन। राग था भैरव और कलाकार थे विपुल छाबड़ा। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे राम कुमार शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। इसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए पहले सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: कार्यक्रम सुबह 7:30 इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
3: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand,

0: तेरा।
1: इसी के साथ हमारा आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
2: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में लिए चलते हैं।
3: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधान

0: मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
0: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं, और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
2: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया।

0: गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, आमादेर मध्ये उपविष्ट हुएछेन विश्वेर सबचेये जनप्रिय नेता भारतवर्षेर यशस्वी प्रधानमंत्री एवं जार हात धरे सिटी अफ जय एई कल्लोलनी तिलोत्तमा कलकाता तथा पश्चिमबंगे जो कम्स टू होम जो बंगे फिरे एलो से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 कोटी पश्चिमबंग वासीर पक्ष थेके राज्य सरकारेर पक्ष थेके हृदय थेके स्वागत अभिनंदन श्रद्धा कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन करछि। महामहिम राज्यपाल माननीय आर एन रवि जी रयेछेन, भारत सरकारेर माननीय स्वाधीन दायित्वप्राप्त राष्ट्रमंत्री प्रताप राव जाधव जी रयेछेन एवं सम्मानित व्यक्तिबर्ग मीडियार बंधुरा एवं योगप्रेमी जनगण रयेछेन। माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे एकटू परेई एक सुविशाल बृहत ऐतिहासिक कार्यक्रम होते चलेछे। इतिमध्ये कार्यक्रमेर आज के जे आंतर्जातिक योगा दिवस जा माननीय प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीते छड़िए दिएछेन, आमादेर पश्चिमबंगे एत दिन एर संगे राज्य सरकार बा सरकारी उद्योग जुक्त छिल ना, कारण आमादेर अजाना। आमी से कथा बोलतेओ चाई ना एई सुप्रभाते, किन्तु आमरा মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে

कुछ तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग इसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए

0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफ स्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प्स अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड। The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है, योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो

0: विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है योग साधकों के बीच।
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है, ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है, और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्री गण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: Guruji, Manish Sarnaji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. Hamari chetna hamare shareer ko follow karti hai. Hum chitt se kaya ki taraf badhte hain. To ye jo grivasan hai, isme hum kya hota hai ki hamari जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
4: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंद चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
3: स्कंद चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं, तो तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, MSc है, MA है और PhD है
0: जी।
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
0: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
4: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
4: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी।
4: yes, and
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
3: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
3: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
1: And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ, तो अर्ध चक्रासन है हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
3: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
3: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
3: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं

0: उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: नाउ आई थिंक द एंथुसियास्ट आर परफॉर्मिंग वक्रासन।
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है और ये हमारी पूरी जो स्पाइन अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं टोज बाहर की तरफ हैं तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी।
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं अर्धउष्ट्रासन हो या मकरासन हो जो अभी हो रहा है ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है। हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की ताड़ासन की तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन भुजंग मतलब कोबरा पोज और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है शोल्डर को भी स्ट्रेंथन करता है बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है और सर्पासन अलग है भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी। गुरु मुनीश सिन्हा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
3: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं योग से उनको जोड़ते हैं तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं एक अच्छे इंसान को बनाते हैं और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं इससे यही योग की जो नेचर है योग का जो नेचर लव है यही दिखाता है जॉय ऑफ गिविंग है यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है इतनी इतनी अच्छी हो रही है मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं बहुत ही सुंदर
0: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है प्राणों के साथ जुड़ना और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
0: जी
2: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है तो स्पाइन पर भी काम करता है एब्डोमेन पर भी काम करता है शोल्डर्स पर भी काम करता है थाई मसल्स पर भी काम करता है
0: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन जी सेतु बंधासन और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी ताकि सहज भाव से कर सके अर्ध हल आसन पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना पवन मुक्त आसन डॉक्टर प्रतिमा
4: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोश्चर है ये
2: जी।
4: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है और क्यों क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं वायु विकार से संबंधित होते हैं तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन जिसके की वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
2: जी गुरु मुनेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है ध्यान जो है वो मदद करता है हमारी
3: एक्चुअली क्या है योगा में उसकी जो डेफिनेशन है योगा चित्त वृत्ति निरोध है
2: जी
3: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं आप कितना भी सशक्त हो जाएं अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं हमारे जितने सैनिक हैं हमारे भारत के जितने फोर्स हैं जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है वो घर से बाहर होते हैं तो उनके लिए योग करना ध्यान करना अपनी वृत्तियों पे काम करना सो दैट अपने देश की रक्षा अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएं ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए है ना योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम
1: डॉक्टर प्रतिमा नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट
4: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपालभाति कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश ब्रेन रीजन और भाती मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाती में करना होता है और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क

0: वो चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही। जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं। और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है। उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी,
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम
0: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए।
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास दैट इज ध्यान और मेडिटेशन विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
0: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
4: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
1: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yoga asanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi.
1: जी, जल, थल, नभ, सभी योग में

0: accepted yoga, has embraced yoga as it promotes not only...
1: रुक जाते थे अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी. कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं. आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस. मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ. मैं एक दृष्टा हूँ. द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है. आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है. जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है. फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है. फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास. इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते. ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है. इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं. द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है. शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है. बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है. इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें. इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी. हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं. अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है. जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है.
2: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही. और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है. और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है. कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं. स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग. तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग. ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है.
3: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships. And also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly. And on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there. And in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board.

0: their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel, and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ ढापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के

0: लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जय हिंद बच्चों, कार्यक्रम बाल समय में आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का स्वागत करती हूँ मैं आपकी प्रियंका दीदी। बच्चों आज क्या है पता है? जरूर पता होगा आप लोगों को, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से हुई है, पर इसका इतिहास बहुत पुराना है। बच्चों योग की उत्पत्ति हमारे देश में ही 5000 वर्ष पहले हुई ऐसा माना जाता है। बच्चों संस्कृत शब्द युज से योग शब्द बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। बच्चों योग हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करने में मदद करता है और इसलिए हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाता है। और पता है इस योग के जनक यानी पिता किसे माना जाता है? हमारे देश के ही एक महान ऋषि महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने 2000 साल पहले योग सूत्र बनाया था। पर हाँ, इससे पहले भी योग किया जाता था। पतंजलि ने जो योग सूत्र बनाया था उसके 8 अंग यानी 8 हिस्से थे, उसे ही अष्टांग योग कहा जाता है। बच्चों ज्यादातर लोग योग को आसन या फिर प्राणायाम ही मानते हैं, पर असल में ये 8 भागों में बटा है और स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए ये 8 अंग यानी ये 8 भाग महत्वपूर्ण है। तो चलो बच्चों आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला भाग या अंग है यम, जिसका अर्थ है दूसरों से अच्छा व्यवहार। जैसे आपको हमेशा सिखाया जाता होगा दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो या सबकी मदद करो, है ना? ये सब योग के प्रथम अंग यानी यम में आते हैं। योग का दूसरा अंग है बच्चों नियम, एक तरह से डिसिप्लिन कह सकते हैं, यानी खुद से अच्छा बर्ताव करना। बच्चों हम सबको पता है कि हमें हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, यानी हमारी दिनचर्या में हमें हमारा हर काम सही समय पर करना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक खाना खाना चाहिए। पर हम हमेशा इन बातों को अहमियत नहीं देते हैं और इस तरह से खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, है ना? इसलिए अष्टांग योग के दूसरे भाग जिसे कहा जाता है नियम में खुद के लिए अच्छी आदतें अपनाने को कहा जाता है। बच्चों तो हमने दो भागों के बारे में जाना, पहला है यम, दूसरा है नियम। तीसरा अंग है बच्चों आसन यानी अलग अलग शारीरिक मुद्रा, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन, ये सब आसन आपको आपके विद्यालय में भी शायद करवा ही जाते होंगे। ज्यादातर ये आसन जो होते हैं ना बच्चों, ये प्रकृति से प्रेरित होते हैं, यानी प्रकृति के अलग अलग जीवों से या पेड़ पौधों से, जैसे वृक्षासन यानी ट्री पोज यानी पेड़ के जैसा, गोमुखासन यानी काउ फेस पोज गाय के चेहरे के जैसा, सिंहासन यानी लायन पोज, पद्मासन यानी लोटस पोज। बच्चों लगभग 80% आसन जो है ऐसे ही प्रकृति से प्रेरित है। अब हम बात करने वाले हैं योग के चौथे अंग की, जो है प्राणायाम। वो एक्सरसाइज जिसमें हम सिर्फ अलग अलग तरीके से सांस को लेते और छोड़ते हैं, जैसे अनुलोम विलोम या भस्त्रिका प्राणायाम। ये अक्सर स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, आप भी शायद जानते होंगे। अब योग के पांचवें अंग के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो है प्रत्याहार, जिसका मतलब होता है ध्यान सही जगह पर लगाना। कहाँ से हटाकर? बाहर की चीजों से हटाकर। यानी अगर उदाहरण के रूप में समझे तो आपको पता है कि आपको कल होमवर्क सबमिट करना है, फिर भी आप होमवर्क करने की जगह कार्टून देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो वो गलत है ना? ये बात आप भी जानते हो। पर उस समय अगर आप बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर अपना होमवर्क करते हो तो वही प्रत्याहार कहलाएगा बच्चों। अब योग का अगला अंग है बच्चों धारणा, जिसमें किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है, यानी बिना पलक झपकाए किसी एक वस्तु को ध्यान से देखना। इस योग से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है।

बच्चों, जिससे हम कोई भी काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अष्टांग योग का सातवां अंग है बच्चों ध्यान यानी मेडिटेशन। ये भी अक्सर आपको स्कूल में करवाया जाता होगा। बच्चों ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम हमारे जीवन में हमेशा सही निर्णय ले पाते हैं। और बच्चों अष्टांग योग का आखिरी अंग है समाधि, पर इस अंग तक पहुंचने के लिए बाकी सभी सात अंगों में निपुण होना जरूरी है, तभी हम समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जो सबसे शांत अवस्था है जिसमें हमारे ऋषि मुनि अक्सर पहुंच पाते थे। अगर हम इस अवस्था तक पहुंच गए ना बच्चों, तो हमारे लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्था में हमारा शरीर दिमाग और मन तीनों एकजुट हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों योग हमारे शरीर का चार्जर है। हाँ बच्चों, ये हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, जो हमारे शरीर को शक्ति देता है। हमारे दिमाग का रिस्टार्ट बटन है और हमारे दिमाग को रिफ्रेश करता है, और हमारे मन का वाईफाई है, जो हमारे मन को जीवन की सुंदरता से जोड़ता है। उम्मीद है बच्चों आप सब भी अब योग का महत्व समझ ही गए होंगे और योग अपनाकर अपने आप को एक सुपर हीरो बनाना चाहोगे। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आज के योग दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। तो इस जानकारी के बाद अब वक्त है बच्चों एक प्यारा सा गीत सुनने का।

इस गीत के बाद बच्चों अब है बारी एक कहानी सुनने की। बच्चों ये कहानी है एक मस्तीखोर बच्चे लक्की की, जिसकी सुबह होती थी मोबाइल से। जी हाँ बच्चों, सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेता, मोबाइल देखते हुए ही ब्रश करता, नाश्ता करता, सब कुछ मोबाइल के साथ। मम्मी पापा मोबाइल देखने को मना करते तो रो धो कर अपनी बात मनवा लेता और हर बात में बहाने। मम्मी कहती, लक्की चलो दूध पी लो, तो कहता रुको दो मिनट, बस मैं ये लेवल कंप्लीट कर लूं। पापा कहते, लक्की चलो बाहर फुटबॉल खेलेंगे, तो फिर बहाना, बाहर धूप है मैं नहीं खेलूंगा। यानी बिना मोबाइल के तो वो घर पर रह ही नहीं पाता था। कहा जाए तो उसका एक ही दोस्त था मोबाइल, पर उसे क्या पता था कि उसकी इस आदत की वजह से उसके साथ कितना बुरा होने वाला था। एक दिन लकी के स्कूल में नोटिस आया कि अगले हफ्ते स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और सिंगिंग कंपटीशन भी है, जिसमें सभी बच्चों को भाग लेना जरूरी है। पर लकी ने इस तरह के कंपटीशन में कभी भी भाग नहीं लिया था, इसलिए उसने इस बात को खास अहमियत नहीं दी और देखते देखते स्पोर्ट्स डे आ गया। सबसे पहले शुरुआत हुई दौड़ की। सभी बच्चे अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगे, पर ये क्या, लकी तो सबसे पीछे रह गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें फूलने लगी और वो हड़बड़ा के नीचे गिर गया। तब तक सभी बच्चे आखिरी छोर तक पहुंच चुके थे। सब लकी को देख के चिढ़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। लकी बेचारा रोते हुए एक कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। अब अगले राउंड में बच्चों को बॉल से निशाना लगाकर सामने पड़ी बोतलों को गिराना था। सभी बच्चे इस गेम को बड़े अच्छे से खेलने लगे। किसी ने चार बोतल गिराई तो किसी ने पूरी की पूरी बोतल गिरा दी। पर जब लकी की बारी आई तब वो निशाना लगा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे दूर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। दिन भर मोबाइल जो दिखता था, और उसकी बॉल जाकर गिरी बाउंड्री से बाहर। फिर से सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। इस तरह से पूरा दिन उसका ऐसे ही गया। आखिरी में जब सिंगिंग कंपटीशन की बारी आई और लकी को गाना गाने के लिए कहा गया, तो उसकी आवाज सुनकर ही सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वो बेचारा रोता हुआ घर वापस आया और दादी से लिपट कर रोने लगा और दादी को पूरी बात बताई। तो दादी ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, अब अगली बार सब अच्छे से करना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सीखोगे ना मुझसे, तुम्हें मेरी अब सब बात माननी पड़ेगी, पर अभी अपना मूड ठीक करो, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम की बात सुनकर ही लक्की छट से खड़ा हो गया। दादी ने कहा, मैं रेडियो में गाना बजाऊंगी, जैसे ही गाना बंद होगा तुम्हें एक पैर में खड़ा होना है, हिले तो आउट। लक्की मान गया। अब रेडियो में गाना बजा तो लक्की नाचने लगा और जैसे ही गाना रुका वह एक पैर पर खड़ा हो गया। तो दादी ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4, ऐसे करके वो 12 तक की गिनती तक खड़ा रहा। अब दादी ने कहा, अगली बार 15 गिनती तक खड़े रहना है। लक्की ने फिर से हाँ कर दिया। असल में दादी उसको वृक्षासन करवा रही थी, जिसकी वजह से वो अब अच्छे से पैरों में बैलेंस बनाना सीख रहा था। इस तरह से दादी हर रोज खेल खेल में उसे नए नए आसन और प्राणायाम सिखा देती और धीरे धीरे लक्की को भी मजा आने लगा और वो स्वस्थ भी होने लगा और साथ साथ उसने फोन से भी दूरी बना ली। इस तरह से पूरी तरह से लक्की स्वस्थ हो गया और अगली बार जब स्पोर्ट्स डे आया तो लक्की ने तो कमाल ही कर दिया, हर खेल में सबसे आगे और तो और सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भी उसने कमाल ही कर दिया। कल तक जो लोग उसे चिढ़ाते थे ना बच्चों, अब वही सब उसकी तारीफ करने लगे थे और ये सब संभव हुआ योग की वजह से। इस तरह से योग अपनाकर लक्की ने अपने ही लाइफ का सुपर हीरो बना दिया। तो बच्चों, आप सब भी अपनी लाइफ की सुपर हीरो बनना चाहोगे या नहीं? अगर चाहते हो तो आज से ही योग सीखना शुरू कर दो। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अब है बारी एक और प्यारा सा गीत सुनने की।

बच्चों योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है पता है? क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, यानी इस दिन सूर्य सबसे ज्यादा देर तक आसमान में रहता है। इसलिए इस दिन को समर सॉल्स्टिस भी कहा जाता है। यानी योग दिवस के साथ साथ आज समर सॉल्स्टिस भी है। और तो और बच्चों, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। योग की तरह म्यूजिक भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। सही म्यूजिक हमारे मन को शांत करता है और ये दवा की तरह भी काम करता है। आप अगर किसी बात पर दुखी या परेशान हो तो म्यूजिक के साथ मेडिटेशन या योग कर सकते हो और ये दोनों मिलकर तुरंत आपके मन को शांत कर सकता है। क्योंकि म्यूजिक हमें खुशी का एहसास दिलाता है, इसलिए तो म्यूजिक को भी इलाज के लिए, खासकर मानसिक रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, जिसे म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। तो अब से जब भी मन घबराए या उदास हो जाए, किसी काम में दिल न लगे, तो म्यूजिक के साथ योगा करो, सब प्रॉब्लम अपने आप चुनंतर हो जाएगी, है ना बच्चों? और पता है बच्चों, आज तो और एक खास दिन है जो है वर्ल्ड फादर्स डे, जो हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो हो गया ना बच्चों आज का दिन और भी खास। तो आज आप योगा कर सकते हो पापा के साथ, म्यूजिक सुन सकते हो। तो बच्चों आज और क्या क्या कर सकते हो? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आप योगा कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, पिता के साथ आज के दिन को खास बना सकते हो ना। और पता है बच्चों आज और एक खास दिन है, वो क्या है पता है? आज है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसके बारे में शायद आपको पता ना हो, तो चलो आज इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों हाइड्रोग्राफी में हाइड्रो का मतलब होता है पानी और ग्राफिक लिखना, नक्शा बनाना या दिखाना। यानी हाइड्रोग्राफिक का मतलब पानी के बारे में लिखना या नक्शा बनाना। इसलिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे को हिंदी में विश्व जल सर्वेक्षण दिवस कहा जाता है और जो सर्वेक्षण करते हैं उन्हें हाइड्रोग्राफर्स कहा जाता है। बच्चों सर्वेक्षण का मतलब होता है नाप जोख कर किसी को पूरी जानकारी देना। बच्चों हाइड्रोग्राफर्स को समुद्र का वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे जमीन एक ही रास्ता ढूंढने के लिए हमें अलग अलग नक्शा बनाना पड़ता है, वैसे ही हाइड्रोग्राफर्स समुद्र, नदी और झीलों के अंदर का नक्शा बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे पानी के अंदर का नक्शा आखिर क्यों बनाया जाता होगा, है ना? बच्चों जैसे सड़कों के नक्शे हमें सही जगह तक पहुंचने में मदद करते हैं, वैसे ही समुद्र में जहाज को चलने के लिए भी नक्शे की जरूरत होती है। बिना नक्शे के तो बड़े बड़े जहाज भी इतने विशाल समुद्र में गायब हो जाएंगे, है ना? बच्चों हाइड्रोग्राफर्स जो होते हैं वो नक्शा बनाने के लिए पानी की गहराई नापते हैं, ताकि बड़े जहाज पानी के नीचे कोई चट्टान हो तो उसे ना टकराएं। यहाँ तक हाइड्रोग्राफर्स पानी के अंदर डूबे पुराने जहाजों, पहाड़ों और गुफाओं को भी ढूंढने का काम करते हैं और समुद्र का नक्शा बनाकर वो वहाँ रह रहे जीवों के आवास यानी घर की भी रक्षा करते हैं, ताकि कोई जहाज गलती से भी उन जीवों को नुकसान ना पहुंचाए। तो हुए ना हाइड्रोग्राफर्स पानी के वैज्ञानिक, है ना बच्चों? इस काम को करने के लिए हाइड्रोग्राफर्स एक विशेष तरह की नाव का उपयोग करते हैं बच्चों, जिसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल कहा जाता है। ये जहाज पानी के ऊपर तैरते हुए अपने नीचे लगे विशेष उपकरणों की मदद से पानी की गहराई और जमीन की बनावट को नापते हैं। और बच्चों इसके लिए जो खास तकनीक उपयोग में लाई जाती है उसे कहा जाता है सोनार, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस तकनीक की मदद से अलग अलग आवाजें जहाज के निचले हिस्से से पानी में भेजे जाते हैं, जो आवाज समुद्र की गहराई तक जाकर चट्टानों से टकराती है और इको होकर वापस आती है, और कंप्यूटर से इस आवाज के आने जाने के समय का पता लगाकर पानी की सटीक गहराई का पता चलता है। तो बच्चों है ना ये काम बहुत दिलचस्प। आजकल तो इस काम के लिए छोटे छोटे ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है, जो खास पानी के अंदर चलने के लिए बने होते हैं, जिन्हें AUV यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी खुद से पानी के नीचे चलने वाली गाड़ी कहा जा सकता है। तो ये काम हुआ ना बहुत दिलचस्प। तो आपको हाइड्रोग्राफी और 21 जून से जुड़ी जानकारियाँ कैसी लगी बच्चों? उम्मीद है जरूर पसंद आई होगी। अब है बारी एक प्यारा सा गीत सुनने की।

के बाद अब है बारी एक प्यारी सी कहानी सुनने की। एक सुंदर जंगल में चीकू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। चीकू बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, टाल मटोल करना, यानी हर काम को कल पर टालना। एक दिन जंगल में रहने वाले एक समझदार और बुजुर्ग हाथी ने चीकू से कहा, चीकू मौसम अच्छा है, मैं सर्दियों के लिए फल और मेवे इकट्ठा करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। चीकू ने आलस दिखाते हुए कहा, नहीं दादाजी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सर्दियों में बहुत देर है, कल तोड़ लूंगा। हाथी ने समझाया, बेटा कल कभी नहीं आता, जो है आज है। लेकिन चीकू नहीं माना और सो गया। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। चीकू हर रोज कहता, कल करूंगा, कल करूंगा। एक दिन अचानक आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हुई, पूरे जंगल के फल खराब हो गए। चीकू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फल की तलाश में वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। कमजोरी और कड़क ठंड पड़ने की वजह से वो बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ा।

जब आँख खुली तो सामने थे हाथी। उन्होंने उसकी जान बचाई और खाने के लिए फल भी दिया। अब चीकू को थोड़ी राहत मिली और उसे अपनी गलती भी समझ आई। उसने रोनी सी आवाज में हाथी से कहा, दादाजी आपने मुझे कितना समझाया था पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब मैं वादा करता हूँ किसी भी काम को कल पर नहीं टालूंगा, रोज का काम रोज कर लूंगा। हाथी दादा भी मुस्कुराते हुए बोले, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी बहुरी करेगा गप। और ये बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर दो, क्योंकि एक पल में दुनिया बदल सकती है ना बच्चों? तो बच्चों, उम्मीद है अब से आप भी किसी काम को कल पर नहीं डालोगे, जैसे आज से योगा शुरू कर सकते हो, है ना बच्चों? बच्चों, अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अपना ध्यान रखना बच्चों, खूब सारी मस्ती करना। जय हिंद बच्चों।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9 बजे है। अब विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है?
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद।

माधुरी दीक्षित नेने और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।

0: उदित नारायण और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और आनंद मिलिंद ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज फादर्स डे है, पिता दिवस। हमारी संस्कृति में पिता को देवता के समान माना गया है। पिता का स्नेह, पिता का अनुशासन और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, पूरी राह दिखाता है। पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यूं तो हर दिन हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ और श्रद्धा समर्पण का भाव होना चाहिए, और यदि कोई विशेष अवसर आए तो उस अवसर को हमें कभी नहीं चूकना चाहिए। इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और विश्व फादर्स डे हमें अपने पिता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का ये सुंदर अवसर प्रदान करता है। आइए हम उन सभी पिता को नमन करते हैं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। यही पिता का स्नेह, यही पिता का प्यार हमारे जीवन को संवारता।
1: जरी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नरजारी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
3: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में यह न केवल जुमरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमरमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
2: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
3: हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए। एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गाँव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गाँव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
2: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
3: हमने सबसे पहले गांव-गांव के महिलाओं को जाकर सहायता किया। SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे, उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए और पंचायत की और

0: जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
1: सरंदन जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई, आपने किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
2: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गांव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है, महिलाओं को हमने बुलाया अपनी पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गांव में अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गांव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन भी बनाए हैं और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था। फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छे तरह से डिस्पोजल हुआ। हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो, लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पोल्यूशन होता है उससे उसका उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस एलपीजी यूज करते हैं और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है। हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर पावर्ड ही है।
1: गीतांजलि, एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
0: हम लोग गांव में जो पंचायत वार्ड है, एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप को हम लोग को गांव गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
1: और सरंदन जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
2: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
2: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया। वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ऐसे करके हमारे गांव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
0: सरकार ने जैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना
1: जी।
0: और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छे से चल रहा है।
1: संगम जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
2: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियाँ संचालित हुई?
2: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार की तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गाँव में।
1: जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है उन्हें आजकल

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे। तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
1: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है। उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पे जोर देते हैं।
0: श्रमदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया? क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, हमारी जो गतिविधियां उन्हें अच्छे से संचालित करें?
1: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गांव-गांव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गांव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने की पेंशन स्कीम के तहत जितने भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं। और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं, और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी, या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
1: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं, और हमें यह बात समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है। इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं, वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
0: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
1: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल के तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है।
0: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
1: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है, हमने पेपर वर्क फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गांव है, विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
0: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से, जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं। पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत के प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे कर ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
0: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं?
2: हाँ।
0: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
1: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और

0: नौकरी का हम लोग निकाल सके उनके लिए, और साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गांव के आसपास जितने भी घर हैं उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियां हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए, हमारे जितने भी गांववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गाँव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी संगदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

श्रेया घोषाल की आवाज में ये तूतक तूतक तूतिया फिल्म का गाना है। प्रणव वत्स का ये गीत लिखा है इन्होंने और विशाल मिश्रा का संगीत है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप सुखी, समृद्ध, ऊर्जावान रहें। इसी के साथ ही एक बार फिर से इजाजत, नमस्कार।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बॉम्बे आया था। मुझको याद, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, में मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी फॉर ग्रांटिंग अस दिस इंटरव्यू।
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अलीजा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this?

0: प्लीज टेल हिज मैजेस्टी दैट आई हैव नो यूज फॉर दैट।
1: ये रेजिडेंट साहब के किसी काम के नहीं है।
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
3: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी के है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहां बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूं मैं हूं मोहब्बतों का राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो। तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में।

0: था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है, तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
1: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
2: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
3: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
2: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
4: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
5: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
6: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होगी।
0: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
7: शीलू से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट्स, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से।

0: बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए
2: और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने ये कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश भर के किसानों के खातों में राशि अंतरित की गई। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसान परिवारों को 490 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खेती के लिए जरूरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकभवन रायपुर में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल, गोवा और तेलंगाना राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका ने कहा कि विभिन्न राज्यों की भाषा, कला और संस्कृति से जुड़ाव देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। कार्यक्रम में तीनों राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस के इस शिविर में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जशपुर वनमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। वनमंडल ने एक दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10 बजे है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 10:10 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण होगा 10:30 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 11:00 से। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा 5:00। भजन संध्या हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:10 पर। चित्रपट संगीत का पानन दे सकेंगे 5:30 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 6:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा 6:30 से। इसी का प्रसारण जारी रहेगा 7:00 से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वन्य जीवन थीम पर विशेष कार्यक्रम का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 9:25 से। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2026 का प्रसारण समाप्ति तक जारी रहेगा 10:00 से। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है।

0: समाकलन। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopalchandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल

0: डिजिटल रेडियो गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए योग और ध्यान। वार्ताकार हैं श्रवण कुमार केजरीवाल, भेंट करता है प्रियंका श्रीवास्तव, प्रस्तुत करता है रवि आनंद।
1: श्रोताओं, हम सब स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं कि आज की व्यस्तम दिनचर्या में हम ऐसा क्या करें कि स्वस्थ हो पाए। इसके लिए हम हमारे खान पान, एक्सरसाइज, योग पर विशेष ध्यान देते हैं। इसमें यदि हम योग की बात करें तो योग द्वारा हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। पर कैसे, यही बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्री श्रवण केजरीवाल जी, जो मुख्य योग प्रशिक्षक रायगढ़ जिले से हैं। पहले तो श्रवण जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रवण जी, पहले हमको ये बताइए कि योग क्या है।
2: योग का अर्थ एक्चुअल में जोड़ना होता है, मगर क्या चीज को हम जोड़े, तो उसमें आता है व्यक्ति, समाज और प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, मन, शरीर और सांसें, इनको जोड़ना ही योग है।
1: आपके कहने का मतलब है कि किसी भी को मन, आत्मा और शरीर को अगर हमने किसी माध्यम से जोड़ दिया,
2: वही योग है। जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ना भी योग है।
1: योग है तो योग किस प्रकार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है।
2: योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ में हमारा मानसिक भी विकास होता है और मन हमारा स्वस्थ रहता है। योग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग के 8 अंग हैं जो महर्षि ऋषियों के द्वारा हमें बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के मूल तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर हम योग की पूरी योग हम परिभाषित करते हैं।
1: जी जी, तो ये किस प्रकार से शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ करता है।
2: देखिए, योग और प्राणायाम है, ये शारीरिक रूप से तो मुख्य रूप से हमें स्वस्थ करते ही है। इसके बहुत से प्रकार है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर के जो भी इंटरनल भाग है, जो मुख्य भाग है, जैसे हमारे फेफड़े हैं, हमारे पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, इनके लिए हम करते हैं प्राणायाम। और जब हमारे हाथ हैं, पैर हैं और हमारे शरीर के जो मुख्य भाग ऊपर के हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम अर्थात योग करते हैं। जैसे हाथों का स्वच्छ व्यायाम सर्वाइकल के लिए, अपने हाथों को मजबूत करने के लिए, पैरों का स्वच्छ व्यायाम अपने पैरों को दर्द को कम करने के लिए, अपने पैरों की समस्या को दूर करने के लिए। इसी प्रकार से कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर भारी हो गया है, मोटापा है, इसी प्रकार से और भी जैसे कई प्रकार की महिलाओं की भी समस्याएं हैं, उज्जाई है, जैसे मान लो उज्जाई प्राणायाम हम लोग करते हैं किस लिए, थायराइड के लिए, महिलाओं में मुख्य रूप से थायराइड की समस्या पाई जाती है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्राणायाम है। और विभिन्न प्रकार के आसन, योगासन है, मन को स्थिर करने के लिए वृक्षासन है।
1: तो ये कह सकते हैं कि जो हम प्राणायाम करते हैं और कुछ आसनों के द्वारा हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और इसी प्रकार अगर पूछें कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाता है ये।
2: मानसिक स्वास्थ्य को देखिए, ये हमारा मन और हमारा जो इसको स्वस्थ करने के लिए हम एकाग्र ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम खो जाते हैं शरीर और आत्मा के मिलन में। सबसे पहला स्टेज है शरीर से

0: आत्मा का मिलन, ये है ध्यान। उसके बाद है आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये समाधि की अवस्था है। इसमें आने के बाद हमारा जब आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता है, जब हम ध्यान प्राणायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और मन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और जब मन स्वस्थ होता है तो ऑटोमेटिक हमारा मस्तिष्क तो सोचने समझने की शक्ति जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और मानसिक संतुलन बिल्कुल कायम रहता है।
1: मतलब इस प्रकार आप कह सकते हैं कि योग जो रहता है शारीरिक के साथ साथ हमको मेंटल हेल्थ भी देता है। तो अगर आपने इसमें ध्यान की बात की
0: जी,
1: तो क्या योग और ध्यान एक ही चीज है?
0: नहीं, योग और ध्यान अलग अलग चीज है। देखिए, योग में योग के दो पहलू हैं, आठ प्रकार मैंने बताया आपको, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सबसे पहले तो अब आसन आप कैसे बैठते हैं ये निर्भर करता है। आप एक चटाई लीजिए, कुछ मैट लीजिए, उसके ऊपर आपको बैठना है। खुलीदार हवा में योग करना चाहिए जहां से एयर का ट्रांसमिट होता रहे। योग जहां भी करें वहां शांति होनी चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। किसी सरोवर में या गार्डन, किसी सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे या गार्डन में योग करना सर्वोत्तम माना गया है।
1: मतलब ये कहना चाहिए कि किसी भी प्राकृतिक आवास में अगर हम देखें या खुले में, वो योग करना सबसे अच्छा माना
0: गया है। सबसे अच्छा माना।
1: तो यदि हम ये चीज देखें कि योग करते समय में किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: योग करते समय मुख्य रूप से सबसे पहले जो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले हम आसन में बैठते कैसे हैं, हम
1: जी
0: हम कहाँ पर बैठे हैं,
1: मतलब वो स्थान मैटर करता है।
0: स्थान में आ जाता है, हम कैसे स्थान का चयन कर रहे हैं, कहीं वहाँ हल्ला तो नहीं है, भीड़ भाड़ तो नहीं है, बहुत अधिक डिस्टर्बेंस तो नहीं है,
1: मतलब एकाग्रता
0: में। और मुख्य रूप से योग करने के लिए हम अपनी सांसों पर नियंत्रण हमको करना चाहिए। जो व्यक्ति सांसों पर नियंत्रण करते हुए, सांसों का सही ढंग से पालन करते हुए योग करता है, उसे 100% लाभ मिलता है। कहां सांस छोड़ना है, कहां सांस भरना है, इसका विशेष रूप से हमको ध्यान रखते हुए योग करना चाहिए।
1: मतलब योग में सांस के छोड़ने और लेने के भी एक
0: बहुत बड़ा अपना महत्व है उसका।
1: जी जी। तो योग भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए योग और ध्यान किस प्रकार सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, हमारे इमोशंस भावनात्मक और जो ध्यान है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। अगर हम भावात्मक रूप से अगर देखेंगे और बैलेंस के लिए अगर देखेंगे तो सबसे बेस्ट है प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम, जिसके माध्यम से हम अपने गुस्से को, अपने दिमाग को अच्छी तरह से शांत कर सकते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और सशक आसन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसको करने से हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन, मन की अशांति पूरे रूप से दूर हो जाती
1: है। मतलब ये कहना चाहिए कि योग हमको भावनात्मक रूप से भी एकाग्र करता है।
0: जी।
1: और आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है?
0: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 में
1: जी,
0: और इस वर्ष 12वां विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है 2026 में। विश्व योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कितने से कितने ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। अभी विश्व योग दिवस में हमारे करीब 210 देश एक साथ विश्व योग दिवस मनाते हैं।
1: तो अगर हम ये कहें कि इसके उद्देश्य क्या है?
0: इसके उद्देश्य है मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करना है अपने स्वास्थ्य के प्रति।
1: मतलब योग द्वारा स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहें और योग द्वारा कैसे स्वस्थ रह सकते हैं?
0: जी, हम कैसे लोगों को जागरूक करें कि वो सुबह उठ करके 1 से 2 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए दें और स्वस्थ रहें। और अनावश्यकता जो ये आदमी जो अभी अब
1: व्यस्ततम दिनचर्या है
0: उसे निकाल करके, मेडिकल का जो अभी समस्या चल रही है मेडिकल की, जिसमें आदमी जो मीडियम वर्ग का व्यक्ति है वो अनावश्यक अपने बजट से बाहर जाकर खर्च करके अपना बजट को बिगाड़ रहा है और स्थिति उसकी खराब हो जाती है, क्योंकि अभी महंगाई इतनी है। इसको नियंत्रित करने के लिए और अपना जीवन स्वस्थ बनाने के लिए अगर प्रतिदिन अपने परिवार के साथ व्यक्ति 1 से 2 घंटा योग करता है तो निश्चित रूप से वो अपना जीवन आसानी से और बहुत खुशहाल रूप से जी सकता है।
1: मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो योग है, योग के द्वारा अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जो मेडिकल में पैसे,
0: निश्चित रूप से आप बीमार नहीं
1: होंगे
0: और स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य भी अच्छे होंगे, चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, व्यापारी हों, चाहे पॉलिटिकल लीडर हूँ। अगर आपका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो आपकी सोच अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके निर्णय अच्छे होंगे, और जब आपके निर्णय अच्छे होंगे, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र के हो उस क्षेत्र में आपको उन्नतर प्रगति मिलेगी।
1: जी सर। तो जैसे कि हर दिवस की एक थीम तैयार की जाती है, तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है?
0: इस बार वृद्धावस्था स्वास्थ्य को लेकर के थीम दी गई है। वृद्धावस्था में योग, मतलब जो व्यक्ति 50 से ऊपर के हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 60 के आसपास या 60 से ऊपर के हो गए हैं, उनको नित प्रतिदिन सुबह उठ करके 1 घंटा योग अवश्य करना चाहिए अपने शरीर के लिए, ताकि उनको बुढ़ापे में किसी का सहारा न लेना पड़े और अपनी दिनचर्या वो स्वयं अपने शरीर के माध्यम से कर सकें, उनको बेड भी

0: किसी प्रकार का नरक न भोगना पड़े, ये उद्देश्य मुख्य रूप से इस बार हमारे शासन के द्वारा रखा गया है।
1: जी सर, आजकल सामुदायिक योग के बारे में भी बात हो रही है, वो क्या होता है?
0: सामुदायिक योग का देखिए, सामुदायिक जो शब्द है एक समूह से निकाला गया है। जैसे समूह में योग, जैसे किसी गार्डन में बैठ के 20 लोग योग कर रहे हैं, किसी सरोवर के किनारे 50 लोग बैठ के योग कर रहे हैं। आजकल आप लोग देखे होंगे कि ट्रेनों में भी, वंदे मातरम भारत ट्रेन में भी 20-30 लोग इकट्ठा होकर योग करते हैं। यही है सामुदायिक योग। इसी में सामुदायिक योग से रिलेटेड एक है, आजकल इंटीग्रेटेड योगा चल रहा है।
1: वो क्या होता है?
0: इंटीग्रेटेड योगा है एक समय में दो कार्य। इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे को आपस में जोड़ना। जैसे आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, पैरों का, हाथों का, कुछ भी व्यायाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं साथ साथ, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड योगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कम समय में ज्यादा काम।
1: तो जैसे आपने इंटीग्रेटेड योगा के बारे में बताया, तो जैसे हम पर्सनली योग करते हैं या सामुदायिक योग करते हैं, इंटीग्रेटेड योगा जो करते हैं, तो इसमें लाभ क्या है? जैसे सामुदायिक योग का क्या ज्यादा लाभ मिलता है?
0: सामुदायिक योग का लाभ ये है कि जैसे हम एक व्यक्ति अगर घर में अकेले योग करता है, कोई भी एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बैठने के बाद उनको कुछ फील अच्छा नहीं लगता, मतलब बोरियत सी आने लग जाती है कई बार। तो समूह में जब हम योग करते हैं तो एक हंसी खुशी का माहौल रहता है, उस माहौल का लाभ मिलता है। और जब समूह में योग करते हैं तो हम किसी सरोवर में, किसी गार्डन में बैठ के करते हैं, तो कुछ हंसी मजाक के भी अवसर आते हैं और एक लगाव सा हो जाता है समूह का आपस में, तो उससे हमारी करने की जो स्टेमिना वो बढ़ जाती है।
1: जी, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, देखिए महिलाओं के लिए योग अभी सबसे अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं घर के कामकाज में बहुत व्यस्त रहती हैं। कुछ महिलाएं जो सर्विस वाली भी हैं, कामकाजी महिलाएं, अपने घर का काम सुबह का निपटा के अपने काम में निकल जाती हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। महिलाओं में सबसे ज्यादा शिकायत है थायराइड की, मोटापे की, कमर दर्द की, पैरों में दर्द की। इसलिए महिलाओं के ऊपर अभी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से बोलना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम का पूरा पैकेज कम से कम एक घंटा अपने लिए निकालें, सुबह निकालें, शाम को निकालें, जब आपके पास समय हो तब निकालें और योग अवश्य करें। इसके पश्चात मैं बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं, जिनकी याददाश्त कमजोर है, जो पढ़ने लिखने के बाद कुछ क्षण बाद उसको भूल जाते हैं, उनके लिए प्राणायाम अगर वो करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो निश्चित रूप से उनकी याददाश्त बढ़ेगी और भूलने की समस्या दूर हो जाएगी। इसी प्रकार बुजुर्गों के लिए भी वही चीज है, याददाश्त की समस्या है, सांस की समस्या है, सांस लेने में बुजुर्गों को तकलीफ होती है, पैदल चलने में, उठने में, बैठने में, अपने स्वयं के कृत्य करने में भी, दैनिक दिनचर्या में भी उनको तकलीफ होती है। तो इसीलिए इस बार जो थीम बनाई गई वृद्धावस्था के लिए, वृद्धावस्था में स्वस्थ, उनको भी जरूर एक घंटा योग करना चाहिए। इसी प्रकार स्वस्थ पुरुष, चाहे वो स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कम स्वस्थ हो, प्रति व्यक्ति को, प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक वृद्धावस्था में पुरुषों को, महिलाओं को योग एक घंटा कम से कम अवश्य करना चाहिए, यही मेरा संदेश।
1: तो मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं, आपसे ये संदेश पाके और इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त करके हर उम्र के लोग योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल होंगे। श्रवण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए योग और ध्यान। वार्ता करते श्रवण कुमार केजरीवाल, भेंट करता थी प्रियंका श्रीवास्तव, प्रस्तुत करता थी रवि आनंद। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बेगम अख्तर की गाई ये गजल, जिसे लिखा मिर्जा गालिब ने, तर्ज बनाई है खय्याम ने।

0: मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर

0: डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का गीत, जिसे लिखा अनजान ने, तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, मासिफ, नईम राजा, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रेयांश ठाकुर, इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यशु, अंशु गुप्ता। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: दस लाख की लॉटरी, मुझे
7: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
10: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, तर्ज बनाई है सलील चौधरी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, CL यादव। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है

0: मलकापुर महाराज से शत्रुघ्न वाल्मीकि, निन्ना जी, स्वप्निल, अजय खिड़ोलकर, ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीना, पुंजराज आर्यन, आरती आकर्षण, जैशी, पिंकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: मैंने

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
6: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे रवि साथी की आवाज में कर्ज फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाज, आनंदनगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना, निवान शर्मा। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी

0: बॉम्बे टॉकीज और
1: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
2: मुझे याद सब है जरा जरा।
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
5: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में सफ़र फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है आरटी परमा ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है बलौदा कलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि आनंद, समृद्धि पटेल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बैरक, जैतक मीका बैरक, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप प्राशी, शीतल पाटिल, बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे है। अब विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं।
1: जी,
0: कल्याण जी वीर जी शाह।
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठी धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है
1: जी जी,
0: वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए
1: जी।
0: और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
0: जी,
1: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
0: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे, और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
1: क्या बात है, देखिए कहां कहां कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहां पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहां संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
0: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहां बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
1: हाँ।
0: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहां हुआ करते थे, और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए, और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था, उसका नाम था क्लेवियोलाइन, और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी
1: जी जी,
0: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है, और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई है।
0: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को
1: जी जी,
0: और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
1: और क्या ही मीठे गीत उस फिल्म के हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया, और मुझे लगता है ये समय आ गया

0: है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी, वीर जी, शाह जी को हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी, वीर जी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
1: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
2: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेविलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था, उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई। और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझते नहीं है, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को न दसी हो रही। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन बीन बसाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं, सही लता जी ने कहा था उससे।

0: कलन जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा अवार्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुनाते हैं ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, बस यही, बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।

0: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
1: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी, कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करें, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोरदा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते, तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोरदा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बात पॉइंट अच्छा अच्छा है, फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खा लिया, आपके इतने फैन है कि यार 1-2 दफ़े बोलते रहो बहुत अच्छा है, यार मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो ऐसे मास्टर हो गए कि ओ हो, आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मतलब योडलिंग, तो हम लोग बैठ के कोई प्लान बना थे, मतलब किशोरदा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बड़े, तो मेरे किशोरदा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे भी, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ

नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को, माँ पूछ। तो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोर दा अभी वो आवाज़ निकाली आप, इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैं कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूँ ऐसे? तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक जोर से एक ऐसे लाफा मारा, तो हमने दौड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया। बस इस टाइम

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल

0: आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज़ किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के ज़रिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजाक की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 25 साल कुछ 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
0: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जाम जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो सब है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी, अब ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेज भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है, बस दिस इज बेस्ट आके पिक्चर में वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी कलान जी भाई, बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, तो बोले वो क्या वो समझे नहीं, बाद में उनको समझाएगा कि हम सही बोल रहे थे।

0: मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज़्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है, बस ये इनकी एक खूबी थी। तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा मेरा,

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको ज़रूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूज़िक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के श्री रामचंद्र उन्होंने बहुत अच्छा किया, मदन मोहन उन्होंने अच्छा किया, शंकर जयकिशन उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था, सलील चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब ने। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने, तो मैं SD बर्मन को बहुत मानता। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बना देते तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया वो सुना, ये बहुत मज़ा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता, तब भी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं दिखाऊँ कि बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही एक खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कंपोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: कल्याण जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो, कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना है। ऐसा ना पैसा है काम का रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना, ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले वो संस्कार हैं ना, वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं। तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

0: को चलना।
1: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: संगीत का सौंदर्य जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
1: वाह क्या बात है।
2: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में,
1: वर्सेटाइल, वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
2: जी हाँ जी। और आपको नहीं लगता जयंत जी की राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
1: जी,
2: आज
1: जी।
2: तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है वो भी आर डी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
1: और विविधता ये जो शब्द है इसको सार्थक किया है आर डी बर्मन के संगीत ने।
2: जी हाँ,
1: आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
2: जी हाँ, एक लंबा दौर आर डी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का गीत,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिर आए बदरा सावरिया,
1: रोंगटे खड़े हो गए।
2: जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए।
2: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा जाता है, बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आर डी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ।
1: वाह वाह।
2: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी,
1: जी
2: एक ऐसे प्रयोग धर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया, और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
1: जी जी।
2: श्रोताओ, आर डी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार। और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती के मंच पर।
1: यही विशेषता इस श्रृंखला की है।
2: हाँ।
1: कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार हैं।
2: जी हाँ।
1: आशा जी और गुलजार साहब।
2: जी हाँ। और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे। तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए।
1: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की, यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है।
2: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी।
3: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी, मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
4: अच्छा।
3: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
4: अच्छा।
3: तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था, और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
0: अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई थी।
3: कट्टी हो गई थी। और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था, मतलब दो या तीन लता भाई जैसे आर्टिस्ट, आशा बोलो कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल उतना
0: रिहर्सल
3: नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे, तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए।
0: रूठे हुए थे,
3: रूठे हुए। तो पिताजी आए, आके बोला कि लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे। वो ऐसे बात करते थे, बोला आपको जितना डेट चाहिए, एक महीना का चाहिए ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आजा घिरा है। और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया। अच्छा, और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर।
2: एक बात मैं आपसे पूछूं?
3: बिल्कुल,
2: सच बताने का।
3: हाँ बताइए।
2: जब अपने लता मंगेशकर को
3: जी
2: पहले रिहर्सल के लिए
3: ये कुछ
2: गाना शुरू किया,
3: घिराव करके मेरे तरफ आ रहे,
2: तब आप अंदर से कांप रहे थे?
3: बिल्कुल कांप रहे थे। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहली दफा उनको मिला मैं, मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसकी रिकॉर्डिंग में मिला।
0: अच्छा।
3: एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरा बहुत मेरा भागी चमक।
0: क्या बोल कैसे उस गाने के,
3: घर आजा घिर आए।

0: ये तो शुरुआत हुई आर डी साहब की, और उसके बाद
1: अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं, और उसमें आर डी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है रेलगाड़ी, और उसके साथ जी हाँ फिल्म जी, किताब जी, का जी, वो एक जबरदस्त गीत है स्वयं आर डी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आर डी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी।
2: आप सबको तो गवाते हैं
3: जी,
2: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं, कहते आज नहीं गाऊंगा मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ, अच्छा छोड़ दे तू भी मत गा आज, कल करते हैं परसों करते हैं,
4: बिल्कुल इसी तरह की हरकत है आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
2: जी,
4: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के जिस तरह से आपने गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है, ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता
2: ये ज़्यादा बेटर है
4: तो उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से,
2: उसमें एक गिटार का जो पीस है
4: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
3: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग,
4: अच्छा
3: तो वो मैंने सुना और सुनने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा, तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए, वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइस, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन लोग खराब तरीके से भी यूज
4: करते हैं। मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट हो गया, और तो कुछ भी नहीं,
2: उसी के ऊपर
3: कैसे गा रहे थे हम
2: क्या,
3: चलिए गाना सुन के देखते हैं।

0: फिल्म किताब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना, मनीषा जी आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिलकर के ये एल्बम बनाया था दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए उतनी
0: इस
1: बार।
0: एल्बम के दो वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है, उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए अलग है
1: जी। तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं?
0: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
1: अच्छा।
0: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना,
1: क्या बात है। ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की, तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: दिल पड़ोसी में आप गाना?
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी,
2: इसके बारे में तो गुलजार बताए।
4: सातों बार भोले बंसी, एक ही बार बोले ना, तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले,
3: बोले ना।, ना
4: ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: हाँ। कैसे?
4: जितनी फूंक तन

श्रोताओ, ये था फोन इन फरमाइश। श्रोताओ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमने की थी शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को। फोन इन फरमाइश के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से 11:30 तक। तो अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अभिषेक को, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। इसी तरह फोन करते रहिए और सुनते रहिए फोन इन फरमाइश।

0: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी अभिषेक शर्मा की। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देशभर में आयोजित योग कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योग अभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्यपाल रमन डेका आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। वहीं अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को नियमित रूप से योग अपनाकर स्वस्थ संतुलित और निरोग जीवन जीने का संदेश दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति और युवाओं सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे अभनपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी उपस्थित रहेंगे। 10 दिनों का कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के शिविर में प्रदेश भर के पार्टी के जिलाध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है, जिसके असर से राज्य के उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री अधिक है, जिसके कारण रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चार पहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फरार 5 मुख्य आरोपियों में एमसीबी और कोरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कल दबिश देकर पकड़ा। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।
2: नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
3: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
4: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
2: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: साहिल लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
5: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा

0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने। और श्रोताओ, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म फर्ज का गीत आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

0: हमारी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

रेडियो भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की सुर लहरियों की खनक आ चुकी है श्रोताओं, आपके आंगन में लेकर सुरीला सफर, जहां हम और आप मिलकर गीत संगीत का ये सफर तय करते हैं। तो आज भी थोड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरेगा ये सफर, सुरीला सफर। हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने पढ़ी ली है आज की इबारत टेक्स्ट और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। तो हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर आज का ये टेक्स्ट या इबारत कह लें पढ़ देते हैं। राजस्थान की वो मखमली रात, रेत में पानी सी लहर, चांदनी ने चंदा से कहा, केसरिया बालम थानी नैना में रमालू, चल मेला देखूंगी सोना चांदी मीनाकारी के जेवर सब खरीदूं, पहनी माथे की रखड़ी सात रंग की चुनर, तो देख बींद ने कहा खूब लगती हो, लगे होरी आई है, जहां जहां मैं जाती हूँ गुड़िया गुलाबी पत्थरों महलों की अटारी ऊंट की सवारी सब जैसे नैनों में बादल, सच इनके बिना जीना लगे, पीतल की गगरी नारी हाथ न लगाना पानी का मोल जानती भी है, बींद बोला अरी बींदनी अरी दिले नादान, ये आरजुओं का शहर है, जो आएगा वही समझ पाएगा। तो श्रोताओं ये थी आज की इबारत या कह लें टेक्स्ट। रेगिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को अपनी आगोश में समेटे प्रांत राजस्थान ने श्रोताओं जहां ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा है, वहीं यहां लगते मेले, यहां की लोक संस्कृति कला और सुंदर वन्य जीव राजस्थान के कुंदन हार की तरह हैं। तो आज राजस्थान की बातें, रेत की बातें, जी हां, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो नमक का रेगिस्तान भी है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सोंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया आलम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे

श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समुद्र में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है, जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान की रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ एक गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफर में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊँटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊँटों की सवारी की है, तो हमें जरूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी, तो आप जरूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोता, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है, तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति रहन सहन परिधान खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी गट्टे की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना, मारो राजस्थान सबसे निरालो छ। जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है, और गीत को भी इन्होंने चुना है तू चंदा में चांदनी पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सब परिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर जोधपुर और जैसलमेर। खास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे, और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवाकर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है, और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं, और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी सेहरा, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना, श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ के रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौड़ी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाजार की बात की है श्रोताओ, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाजार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चामुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है, ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं, जी हाँ आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबीलिया नृत्य, भवाई नृत्य, राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य और दाल बाटी चूरमा, खेर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है, ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे कलबेलिया, तेहरताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

इस गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नजर आती हैं हेमा मालिनी। श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मोरी गागरी और मंगवा दे और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हो तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा। जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुनीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है। महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोताओं, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान

लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, 4 महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नज़ारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांदनी जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चूनर के रंग, महल, अटारियां सब के बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती है लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

कैफी आजमी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सिखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छतरियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी

स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता का ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है, वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आप को बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है। तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियाँ हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियाँ हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर

किले के बाहर और वर्ल्ड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, जिस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके आध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है।

योग का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
5: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
6: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
6: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला ओपी नैयर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तरसी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी।

0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मुचरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोता परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। सदाबहार नवमी कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओं, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

चोर मचाए शोर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खानापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्री इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सीजल की ये फरमाइश थी।

गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता, इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाह बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

0: अपने मुजोर है।
1: ढीला छोड़ न देना हंस के,
0: रखना दोस्त लगा में कस के,
1: अरे मुश्किल से कर...

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको भी

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गणनलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, नसीम परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मंचा है गीत।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साय लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओ ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाह शीशगढ़ बरेली से इलास इदरसी, नईम इदरसी, नदीम इदरसी ने, और इस गीत के लिए सादुर शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों, यू ब्लैकी रास्कल, उस हाथ को हम जॉन्सबर्ग पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
3: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
3: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मुलेज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह

0: पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
1: सर मैं रेडी हूं।
2: ठीक, देन स्टार्ट।
1: कहिए फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए कब खून किया, कहां किया?
0: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
0: नहीं मालूम,
3: नहीं मालूम, नहीं
2: बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे। ओके सर।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ!

0: इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था।
1: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
0: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
1: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
2: मौसी, दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
1: नहीं, नहीं आऊंगी थोड़ी देर बाद।
0: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
1: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
0: जरा उसे बुलाइए।
1: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
0: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए आप जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
2: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
0: क्या नाम है तुम्हारा?
2: जिनी पैराम्बा।
0: क्या करती हो?
2: कॉलेज में पढ़ती हो।
3: सर, लगता है इसे कहीं देखा है।
2: कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
0: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
0: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
2: जी हाँ, चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
0: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
2: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
2: जी, मेरी? अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
0: प्लीज मिसेस मुलाय, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
2: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ, मेरे साथ आओ।
2: नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
2: मैं कहां जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
2: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा हूं।
0: जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
1: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
0: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर, मैं कह रहा था कि
0: जिडू, यस सर, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
2: नहीं,
0: इट्स माय ऑर्डर।
2: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।

लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओं के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल।

0: की असफल चेष्टाएं। लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: जीनी?
1: जी हाँ, जीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, चार नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी ये, जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तो कैसे हो बेच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, बेच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे, इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जी
1: बचाओ।
0: जी,
1: बेंच,
0: जी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर मुनाई, आपकी वजह से, सिर्फ आप ही की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन।

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात ना करनी हो तो आप जा सकते हैं।

दंडित कवि की माँ ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फोन

प्रकाश सिमर लेसन स्वदेश मोसात मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पिंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये नवाडी, टुकुडांड, पिंडारी, बूढ़ा डांड, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मिंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, झिक्की, परसाडाण, पेटा, कोडेग, बिमड़ा, सामरबार, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 147 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये चचिया और गीत कुमारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
2: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

संगीत कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं पर शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत आकाशवाणी के दिल्ली के आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से पर करेंगे तक कर 10 मिनट पर 5:30 का समय होगा चित्रपट संगीत का 5:20 पर

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे
1: ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
7: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब

मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

रामदास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह!
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।

0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

ये दिन सिंह जेपी और साथियों के सुर में अभी अभी गीत सुन रहे थे। इसका संध्या संपन्न होता है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है।

निष्क के स्वर में भी अपने प्रेम शक्ति का गीत सुना। रचना थी अमन बख्शी की, धुन तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने। इस समय आप सुन रहे चित्रपट संगीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो है, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस के

0: जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है और इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग।

0: फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 अप्रैल की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।

0: अलग अलग सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। पहली घटना अंधियारखोर क्षेत्र में हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें सवार एक युवक की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कारियाम घाट के पास हुई दूसरी घटना में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल इस युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। नारायणपुर जिले में पुलिस ने एक अभिनव पहल करते हुए डीआरजी परिसर में मैत्री कैफे का शुभारंभ किया है। यह कैफे स्थानीय जनजातीय कला, बस्तर सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक स्थापत्य शैली पर आधारित है। इस कैफे का शुभारंभ करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विकास, रोजगार और विश्वास ही स्थायी शांति का आधार है तथा मुख्यधारा में लौटे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास जरूरी हैं। गौरतलब है कि इस मैत्री कैफे का निर्माण नारायणपुर पुलिस के कर्मचारियों ने स्वयं किया है। इस कैफे के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने की योजना है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक द्रोणिका के असर से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण आने वाले 2-3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज की स्थिति में एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है और सीजनल ट्रफ जो है पंजाब से लेकर बिहार तक विस्तारित है। इस प्रभाव से प्रदेश में आज मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री से लेकर 6 डिग्री अधिक है। इस प्रभाव से आज से लेकर आगामी 3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों के लिए ग्रीष्म लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
0: मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार कल 22 से 26 जून तक सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करेगी। इसके तहत 1000 श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरिया जिले के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चारपहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन में उपयोग किए गए म्यूल अकाउंट मामले में 1 आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खाते से 14 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन पाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दिया प्रशिक्षण। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग संभाग में लू के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे

0: बकुर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा।

1971 में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलक गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।

0: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। आन शान या की जान।

0: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धुंग हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे वो

माता का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

0: सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वंदे वंदे मातरम्।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है। किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है।

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर

वीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नज़र शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर

मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया, लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर 3 गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर निहर शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ मोमो मक्खियाँ। सर मैं आपको मतलब नहीं समझ।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा एच्यूमिस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
3: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करते हैं सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
3: यस सर, आई ऑल्सो ट्रीट माई एवरी कस्टमर लाइक माई डैडी।
4: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
3: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
1: राइट।
2: हम तो कहीं तक कस्टमर का पहुंच ले जान लो पावर। चुप सर, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो। फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
3: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
2: जाए कैसे मैं साहब? चुप करो सर। यस यस, रियली यू आर अ ब्रेन, ब्रेन।
3: रियली सर, यू आर अ जीनियस।
1: कस्टमर क्वाइट क्वाइट क्वाइट।
3: ओह
1: कस्टमर आया है।
3: कस्टमर ना कहिए सर।
5: वंडर, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक हर चीज मिलती है।
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
5: वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी। क्या मुझे काफी ज्ञान मिला? हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहां से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई।
3: मोटी मछली?
1: जी जी जी जी जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। मोटी मछली वो आप देख रहे हैं सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
5: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहां पर हर तरह के खिलौने मौजूद हैं सर, और वहां पर एक मोटी मछली भी है।
5: You mean fat fish?
1: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
3: Yes, sir.
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
3: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर। और ये सर, ये देखिए मोटी मछली है।
5: मोटी मछली? ओ आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी है? हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल आपकी तरह। सर ये देखिए,
5: आई लाइक इट वेरी वेरी मच।
1: थैंक यू, आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
5: मेरा छोटा बच्चा
1: वेरी गुड। तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
5: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
5: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
5: वंडरफुल, वंडरफुल, यानी कि अपने आप चलती जाएगी।
1: हाँ सर, देखिए वो बात क्यों है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर।
5: ओह आई सी।
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
5: ओह आई सी, वेरी गुड।
1: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
6: गुड इवनिंग सर।
5: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली,
5: मछली।
6: ओके बॉस। सर आप जरा हाथ आके देंगे?
5: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
6: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
5: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
6: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
5: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
6: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है सर। जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओडो कॉमन शैम्पू, इस शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
5: लेकिन ये शैम्पू,
6: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
1: ओ मिस पाउडर वाला,
5: बच्चे चुप रहे,
1: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
6: आई एम सॉरी सर।
1: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
5: डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
5: ओह यस, ओह यस
1: सर, आई थिंक

0: Oh, you need the shampoo?
1: Why not? Why not?
0: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
2: गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
2: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर, आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बैंजो, गिटार, सारंगी,
3: तानपुरा,
2: तबला, ढोलक।
3: मुझे हर साज बजाने का शौक है, इट्स माय हॉबी।
2: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
3: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
2: तो सर, आप ताल, कहरवा, भैरवी, पाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने?
3: झुमका गिरा रे पप्पा रे
2: चौक, जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
3: आग मटका होई गवा हो,
4: अखिया मिला के जिया भरे माँ के चले नहीं जाना,
5: चले नहीं जाना,
4: चले नहीं जाना।
3: चुप रहिए, मुझे सिर्फ कथकली का रिकॉर्ड पसंद है।
2: कथकली? लेकिन सर, कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
0: भैरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
2: नो सर, नो सर, यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
0: मिस्टर भैरवी लाल साहब, हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
2: कोल्ड ड्रिंक।
0: सुनो सुनो सुनो,
2: मैंगो जूस,
0: मैंगो जूस लाओ।
2: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
0: सर ये नहीं है सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
3: मैंगो जूस क्यों तकल्लुफ है,
0: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर। आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
3: भाई आप मजबूर कर तो खाना ही पड़ेगा।
0: इट्स अ प्लेजर सर।
6: देखा भैरवी लाल, कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
2: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
0: भैरवी लाल, आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
2: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
0: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
4: ये सर,
3: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था।
0: जी,
3: आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक है।
0: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक है।
3: हाँ, तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
4: व्हाट,
0: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर, आप तो मजाक कर रहे हैं।
3: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
0: जी, एक पैकेट सुइयों का चाहिए, सुइयों का पैकेट।
3: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
4: अरे लेकिन साहब सुनो, अरे साहब
2: रुकिए,
4: चले गए,
2: चले गए,
4: चले गए।
2: मोटी मछली।
7: मोटी मछली, वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाजें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फतेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता, गात गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ

0: फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी

0: कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी

0: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका 11 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आईपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और

0: एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन
1: जी हाँ
0: 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था, काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ। बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
2: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
0: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, तो एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
3: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
4: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
3: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
4: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
3: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
4: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
3: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
4: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
3: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
4: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
3: After which the company will assume the administration of Oud.
4: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
3: I hope the king has understood what I've said.
4: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
3: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
4: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
5: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
0: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले, तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
1: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
2: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, जिस उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बंबई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
2: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होती।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
0: खेलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
2: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के। मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
0: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
2: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है।

आपको सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिक की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूं। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस

मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
1: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
2: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में।

0: जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: शहर अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण

के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।